फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि यह बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है। उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए।

और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहतूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। वक्त

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान जे परदेही वजीर अब्बास इराकचे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक राबतो, खिते जी सूरत हाल, ईरान अमेरिका जंग जे खात्मे ऐं गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी डे॒-वठि कई वई। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त खिते में जारी छिकताण जे खात्मे जे हवाले सां ऐं मामलनि ते मुशावरत कई वई ऐं मौजूदा सूरतहाल जो मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जाइज़ो वरितो वियो। तकरार जे निबेरे लाइ कोशिशूं जारी रखण ऐं वेझड़ाई वारा राबता बहाल रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ़ सख़्त मुआशी पाबंदियूं हणण जो ऐलान। सख़्त संदसि चवण आहे त गैर मामूली पैमाने ते मुआशी जंग ईरान खे दुनिया में अकेलो करे छॾींदी। ईरान ख़िलाफ़ तबाहकुन मुआशी जंग जो ऐलान कयां थो। इहा अहिड़ी कार्रवाई हूंदी जेका हिन महिल ताईं थियल कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ सभ खां वॾी मुआशी कार्रवाई हूंदी। मालियाती ऐं कारोबारी इदारनि खे ईरान ख़िलाफ़ लाइफ लाइन फराहम करण जी इजाज़त न ॾींदसि। कंहिंखे बि मुल्क ईरान जी मुआशी मदद कई त हुन ख़िलाफ़ बि कार्रवाई कई वेंदी। भारत में मुक़रर अमेरिकी सफ़ीर जे वलारियल कश्मीर जे हवाले सां तकरारी बयान ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज। अमेरिकी नाज़िम महमूद खे परडे॒ही आफ़ीस तलब करे सख़्त एहतजाज रिकार्ड करायो वियो। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान जम्मू कश्मीर खे भारत जो हिसो करार ॾियण वारे अमेरिकी सफ़ीर जो बयान रद्द करे थो। जम्मू कश्मीर आर्मी तौर तस्लीम थियल तकरारी इलाइक़ो आहे। तकरार जो हतमी फ़ैसिलो गडि॒यल क़ौमनि जे ठहरावनि ऐं कश्मीरी अवाम जे ख़्वाहिशनि मुताबिक़ थियणो आहे। सफ़ीर जो गैर ज़िमेवाराणो बयान अमेरिका जे पुराणे ऐं दस्तावेज़ी मौक़िफ़ जी नफ़ी आहे।
2: जो हमारे एतराजात को एड्रेस नहीं किए गए, अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो खुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें, वो दस्तखत भी कर ले। अब नहीं चाहता कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी जरूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देंगे बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़दशा ख़त्म न थियण जी सूरत में वफ़ाक़ी हुकूमत सां सहकार ख़त्म करण जी धमकी ॾेई छॾी। पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकली वारे फ़ैसिले जी आजियां। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवाननि सां मुलाक़ात बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त इहो मुमकिन नाहे त असीं इतिहादी बेंचिस ते वेठा हुजूं ऐं असांखे कारकुननि जा लाश मिलनि। हुकूमत असां खां सवाइ कानून साज़ी करे सघे थी त करे ॾेखारे। ख़दशा ख़त्म न थियण ताईं कंहिं बि कानून साज़ीअ लाइ हुकूमत खे वोट न ॾींदासीं। अवां मुंहिंजे वालिद सदर साहब खे मंझराए सघो था त मंझराए वोट वठो। आज़ाद कश्मीर में धांधली थी, नून लीग खे तकरारी इलेक्शन घुर्जे त इहा ख़ैर मुबारक हुजे। हुकूमत ऐं इस्टेब्लिशमेंट जे लाॻापन बाबति सवाल जे जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त लॻे थो त दाल में कुझु कारो ज़रूरु आहे।

0: ते पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो। अदालती फ़ैसिलो कंहिं सियासी अमल जो नतीजो नाहे। हुकूमती अपील ते ॿुधणी खां पोइ वज़ाहत थींदी ऐं फ़ैसिले ते अमल बि थी वेंदो।
1: सिंध की बात है, आप कितने कितने कागजात पास हुए हैं सिंध असेंबली में? मैं अगर पंजाब का असेंबली का इज्जत कर रहा हूँ, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली गिलगित बल्तिस्तान का इज्जत कर रहा हूँ, तो अगर मैं तमाम सूबों के कागजात को पार्लियामान के कागजात एहतराम करूँगा, तो अपना सिंध का कागजात का खिलाफ कोई फैसला कर सकता? मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं।
0: नवनि सूबनि बाबति जेको फ़ैसिलो अवाम जो हूंदो, इहो ई पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो। जेसि ताईं का असेंबली मुखालफ़त न कंदी त नवनि सूबनि बाबति मां कीअं एतिराज़ करे सघां थो? सिंध जी सूरत हाल ॾिसी वठो, उते सिंध असेंबली सूबनि ख़िलाफ़ केतिरा भेरा ठहराव मंज़ूर कया आहिनि। हींअर ताईं कंहिं तरमीम बाबति का शइ साम्हूं नाहे आई, उन ते कीअं ॻाल्हाए सघिजे थो? जिते इतफ़ाक़ राय मौजूदु हुजे, उते फ़ैसिला इतफ़ाक़ राय सां कया वञनि। असां ज़ोर ज़बरदस्ती न कल मञी हुई ऐं न ई हाणे तस्लीम कंदासीं। वफ़ाक़ी सरकार बानी पीटीआई खे जेल मां इस्लामाबाद जी शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारो फ़ैसिलो चैलेंज करे छॾियो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त अदालत अॻूरे मरहले में समूरियूं सदाऊं जीअं जूं तीअं मंज़ूर करे केस जे बुनियादी मसइले खे ई ख़तम करे छॾियो, जेको सुप्रीम कोर्ट जे तय कयल असूलनि जे उबतड़ आहे। आइन जो आर्टिकल 25 बराबरी जो हक़ ॾिए थो कंहिं हिकु सज़ा याफ़्ता क़ैदीअ खे ख़ानगी अस्पताल में इलाज जी सहूलियत ॾियण या फ़ौजीदार इंसाफ़ जो समूरो निज़ाम मुतासिर थींदो। अदालत जे अहिड़े फ़ैसिले सां ॿियनि क़ैदियुनि लाइ बि अहिड़नि मुतालबनि जो दरवाज़ो खुली वेंदो। हुकुम जारी करण खां अॻु लाॻापियल धुरियुनि खे नोटिस बि न ॾिनो वियो। अदालती फ़ैसिलो इंसाफ़ जे असूलनि जे उबतड़ आहे, तंहिं करे इन ते नज़रसानी कई वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03008 5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03005-65।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर,
3: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
5: 03013992836।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: हमारे छी बा
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 AM to 5 PM ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएल न्यूज।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ गैर मामूली है। ईरान के तबाही तरफ देखींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर चवाए तो ईरान के मुआहिदो करण जो मौको दिनो हो पर फायदो न वठी सको। हाँ ईरान खिलाफ अड़े तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ वनू पया जेका अग कें बे मुल्क खिलाफ न कई वही है। तेल की स्मगलिंग, तेल बरदार जहाजन रकम की मुंतकली, करेंसी एक्सचेंज मरकजन के इस्तेमाल, फर्जी कंपनियों के नाले से जहाजन की रजिस्ट्रेशन जड़ा मामला मुआशी जंग के निशाने से होंदा। ईरान के परदेही वजीर अब्बास इराकची जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबतो। खिते की सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग के खात्मे ए गडियल दिलचस्पी वारन मामलन ते ख्यालन की डेवट कई वही। ईरानी मीडिया जो चवण है तो खिते में जारी छिकताण के खात्मे के हवाले से ए मामलन ते मुशावरत कई वही। मौजूदा सूरत हाल जो मुख्तलिफ रुखन का जायजो वरतो वो। तकरार के निबेरे लाए कोशिशों जारी रखण ए वेझड़ाई वारा राबता बहाल रखण ते इतफाक कयो वयो। भारत में मुकर्र अमेरिकी सफीर के वलारियल कश्मीर के हवाले से तकरारी बयान ते पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज। अमेरिकी नाजम अलमूर के परदेही ऑफिस तलब करे सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करायो वयो। परदेही तर्जुमान चयो है तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के भारत जो हिस्सो करार देण वारे अमेरिकी सफीर जो बयान रद्द करे तो। जम्मू कश्मीर आलमी तौर तस्लीम थियल तकरारी इलाको है। तकरार जो हतमी फैसलो गड़ियल कौमन के ठहरावन ए कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशन मुताबिक थियणो आहे। सफीर जो गैर जिम्मेवाराणो बयान अमेरिका जी पुराणी दस्तावेजी मौकफ जी नफ़ी आहे।
2: सिंध की बात है, आप गिन लें कितने कर्जदार पास हुए हैं सिंध असेंबली में। मैं अगर पंजाब का असेंबली का इज्जत कर रहा हूँ, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली गिलगित बल्तिस्तान का इज्जत कर रहा हूँ, तो अगर मैं तमाम सुबह के कारोबार को पार्लियामान के कारोबार एहतराम करूंगा तो अपना सिंध का कारोबार का खिलाफ कोई फैसला कर सकता। जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं।
1: नवन सूबन बाबत जेको फैसलो अवाम जो हों पीपल्स पार्टी जो हों जेस ताई का असेंबली मुखालिफत न कंदी तो नवन सूबन बाबत मां कि एतराज करे सगां तो। सिंध की सूरत हाल ऐसी वो उत सिंध असेंबली सूबन खिलाफ केतरा भेरा ठहराव मंजूर कया हिंर ताई कें तरमीम बाबत का शय सामू ना आई उन गाले सकजे तो। जिते इतफाक राय मौजूद हुए उत फैसला इतफाक राय से कया वन अस जोर जबरदस्ती न कल मनी हुई ए न ही हाँ तस्लीम कंदी। इक्तसादी राबता कमेटी 1,08,000 मेट्रिक टन खंड एक्सपोर्ट करण की मंजूरी दई छी। नाणे वारे वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की सदारत हेठ ईसीसी के इजलास दौरान खंड के एक्सपोर्ट लाए आलमी टेंडर्स जारी करण की पिण मंजूरी दिनी वही। नाणे वारे वजारत मौजूद ट्रेडिंग कारपोरेशन वट मौजूद 1,08,000 टन खंड एक्सपोर्ट थन्दी। खंड की एक्सपोर्ट लाए आलमी ट्रेडिंग पीपीआरए कानून तहत कई वी। हुकूमत पेट्रोल महंगो ए डीजल सस्तो करे छो। डीजल की कीमत में 32 रुपया 63 पैसा फी लीटर लाथ। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपया 97 रुपया इजाफो। कीमतन में फेरफार बाद पेट्रोल जो फी लीटर 337 रुपया 51 पैसा लीटर थी वो। डीजल की नई कीमत 363 रुपया 6 पैसा फी लीटर मुकर्र। पेट्रोलियम डिवीजन नोटिफिकेशन जारी कर छो। नवा अघ 20 अगस्त लाइ लागू हूं। गढ़ी यासीन के गोठ बाकरशाह में हथियारबंदन की फायरिंग। धनार नौजवान कतल। हथियारबंदन बकरियों चारींदड़ 30 वरियन के नादिर मारफाणी के फायरिंग करे कतल करे छो। नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कयो वयो। घर में रोजराड़ो

0: गेड़ी खेरों में बेगारी कैनाल मां निकरंदड़ मुख्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबबि ट्रैफ़िक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। आबादगारनि पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताज़ा शाह, खीदन शाख, लुंड माइनर ऐं सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: तू नहीं दी रात जाता रात वंता तू नहीं दे तू नहीं दे।
1: ओके किसका गाना ये?
0: यो अमन मुगल का नाम है, अमन मुगल।
1: ओके जी, अहमद मुगल का बड़े सैड सॉन्ग सुना रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और गाना हम प्ले करने जा रहे हैं जो कि मैंने कर भी दिया है।

0: GA Sucker FM 88.
1: लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल

0: LG ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन के जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: बारह किलोमीटर और जहाँ भी पुस्तकाल है वो पंखे की आवाज दे तो इंडिया में सुनाई दे।
1: अच्छा क्या बात है जी, क्या बात है, पड़ोसी मुल्क के आस पास रह रहे हैं आप।
0: और हम पहले हम बगैर वीजे के इंडिया में चले जाते थे मिसाल के तौर पे, इंडिया के सराज क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाते थे वापस आ जाते थे।
1: चले पुराना दौर जा चुका है, अब हम नए दौर में जी रहे हैं।
0: अब उन्होंने बार लगा दी है बहुत तकरीबन 20 करोड़ की।
1: चलें खैर कोई बात नहीं, अब आप वीजे पे जाया करें।
0: जी जी जी इंशाल्लाह। ये कराची वालों जो है ना मेरे ख्याल में इस तरफ से जाओ खोखरा पार बॉर्डर की तरफ से।
1: ओके ठीक है।
0: सर बात ये कि आज वो मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ा अनोखा फोन है माशाल्लाह।
1: अनोखा है फिर तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये क्या गाना है।
0: तो ये सॉन्ग है जी।
1: ओके
0: और मेरे दोस्त हैं फराज भाई है शक्कर में, जवार भाई है शक्कर में, और ये क्या उसको कहते हैं लुंड ताहिर लुंड, और उनके वाले साथी को सलाम कहूंगा। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम।
1: अच्छा मुझे ये बताते जाएं, मुझे ये बताते जाएं कि इस गाने का टाइटल क्या है और सिंगर कौन है।
0: अरे नहीं सिंगर तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत पुराना सॉन्ग है। टाइटल है जी अनोखा लाडला।
1: अनोखा लाडला, चलिए मैं इसको सर्च करती हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्वीट कॉलर। अच्छा मुझे एक कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी इस गाने की, तो ये वाला गाना सुनते हैं, और ये वाला गाना सुनते सुनते ना हम एक और गाने की तरफ चलेंगे जो कि मुझे रशीद अहमद ने सुनाया, मैं उसको सर्च करने की कोशिश करूंगी। ठीक है,

ओके जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं साहिर अली बग्गा की आवाज में. अच्छा रशीद अहमद, आपका गाना मुझे नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला प्ले कर रहे हैं और ये वाला प्ले करके न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवत कई वई। ईरान मीडिया जो चवणु आहे त ख़िते में जारी चिकतान जे ख़ात्मे जे हवाले सां अहम मामलनि ते मुशावरत कई वई ऐं मौजूदा सूरतहाल जो मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जाइज़ो वरितो वियो। तकरार जे निबेरे लाइ कोशिशूं जारी रखण ऐं वेझड़ाई वारा राब्ता बहाल रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना के तहत कार्रवाई जारी। वधीक पंज दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब पंगोर जे इलाइक़े कुली सूरान में गुझी इतला ते ऑपरेशन करे पंज दहशतगर्दनि खे जहन भेड़ो कयो। उहे दहशतगर्द मक़ामी माण्हुनि खां फुरलुट भटे खोरनि टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ।

पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलिक चयो आहे त असांजी कोशिश सां रिफाइनरी ॻाल्हि मञी डीज़ल जी क़ीमत घटी वई आहे। IMF जे मुआदे खे ॾिसंदे पाकिस्तान जी तवानाई सिक्योरिटी बणाइण ताईं ज़रूरी आहे। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बि जल्द मुआदो थींदो। तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते शाम जो परदेही वज़ीर ख्वाजा असद हसन पाकिस्तान जे दौरे ते पहुची वियो। अॼु पाकिस्तानी तयारियुनि सां मुलाक़ात कंदो। असद हसन नायब वज़ीर आज़म साहब डार जे दावत ते पाकिस्तान पहुतो आहे।

गढ़ी यासीन के गोठ बाकर शाह में हथियारबंदन की फायरिंग, धनार नौजवान कतल, हथियारबंदन बकरियों चारिंदड़ 30 वरियन के नादिर मारफाणी के फायरिंग करे कतल करे छोड़ो, नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले, घर में रोजराड़ो।

0: ऐं गढ़ी खेरो मेवे वारे केनाल मां निकरंदड़ मुख्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबब ट्रैफ़िक मुअतल थी वई, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताज़ा शाख ईदन शाख डोन माइनर ऐं सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फराम पियो वञे।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज योग सार है आपको मेरे साथ पूरी 1 बजे तक का है. और वापस आ चुके हैं जी 12 बजे वाले ब्रेक के बाद, जिसके बाद हमारा सेगमेंट होता है दैट इज हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके जानिब से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं. और आज काफी दिनों बाद हमारे साथ फिर से मौजूद है जी एहतसामुल हक. और एहतसामुल हक जो कि चाइना से हमें हमेशा की तरह लाइव ज्वाइन करते हैं और आज भी हमें ज्वाइन किया हुआ है. तो सबसे पहले हम एहतसाम को कहते हैं खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी एहतसाम,
1: मेरी आवाज,
0: जी आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है, आपको मेरी सही से आ रही है?
1: जी जी आपकी आवाज ठीक आ रही है.
0: ओके जी एहतसाम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं?
1: जी अल्लाह का शुक्र है और आई होप के तमाम हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे.
0: बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह. और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस वक्त चाइना या बीजिंग का जो मौसम है वो कैसा है, क्या वहां पे रातें ठंडी हो गई हैं?
1: बहुत ज्यादा ठंडक तो नहीं है अभी, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है अभी जो नजर आ रहा है मौसम थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी का. लेकिन ये है कि जो एक 2 हफ्ते पहले तक जो गर्मी थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है दिन के औकात में और थोड़ा सा प्रेजेंट होता है मौसम. लेकिन अभी फिलहाल अगर आप कहें तो गर्मी जारी है. उम्मीद यह है कि शायद ये 31 अगस्त तक ऐसी जारी रहे और उसके बाद मौसम थोड़ा सा तब्दीली की तरफ जाएगा जब ऑटम यहाँ शुरू होने लगेगा.
0: ओके जी ग्रेट. अच्छा एहतसाम, आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं?
1: देखिए हमने काफी बार बात की है कि बीजिंग में या खास तौर पर बीजिंग की भी हमने बात की और चीन में भी, कि पिछले 10 सालों में जो तब्दीली हमने माहौल में देखी है, यानी आज से 10-12 बरस कबल जब लोग यहाँ आए थे वो जब अब दोबारा आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये इतना साफ एनवायरनमेंट कैसे हो गया है. जो फजाई आलूदगी थी, हवा की ज्यादा होना, गर्द आलूद होना, डस्टी रहना, ये सब कैसे ठीक हो गया है. और जो इतना ज्यादा डस्टी होता था कि जो आसमान है आपका वो नजर नहीं आता था, नीला आसमान नहीं आता था. तो अब एक टर्म यहाँ यूज की जाती है ब्लू स्काई, कि अब आपको नीला आसमान साल के अक्सर दिनों में नजर आता है. तो ऐसा क्यों है? हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत सारी एफर्ट्स तो हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का कितना किरदार है. क्योंकि ये रिलेट यूं करता है रुखसार के हम अपने यहाँ भी जब बात करते हैं तो हम कोशिशों पर तो जरूर बात करते हैं कि देखें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अब दुनिया तब्दील हो गई है. दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए फवायद हासिल करने की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है और उसके नतायज हमारे सामने आ रहे हैं. तो जहां ह्यूमन एफर्ट्स की बात हो रही है वहां टेक्नोलॉजी को खास तौर पर अब मस्नूई जहानत, जैसे हम AI कहते हैं, उसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी वाज़े मिसाल हमारे सामने है. क्योंकि अब नीला आसमान कोई गैर मामूली मंजर नहीं रहा है और मेरे ख्याल में बीजिंग की जो फजाई बेहतरी है उसकी सबसे दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि आलूदगी कम हुई है, बल्कि ये है कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी, आदाद शुमार और कंटिन्यूस अगर मैं कहूँ मॉनिटरिंग, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें अब यहाँ पर नजर आ रही है. अगर आप सरकारी आदाद शुमार की बात करें तो 2025 में बीजिंग में 311 दिन 365 में से हवा का मयार अच्छा या निस्बतन बेहतर रहा, जो साल के तकरीबन 85.2% बनता है. इसके बरक्स 2013 की जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके स्टैट्स निकालें तो जो शदीद आलूदगी वाले दिनों की तादाद थी वो 58 थी. और वो जो तादाद 58 2013 में थी शदीद आलूदगी की, वो 2025 में सिर्फ एक दिन रही. सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसको हम शदीद आलूदा कह सकते हैं, यानी नॉर्मल तो आलूदगी रही लेकिन शदीद आलूदा जब वर्क फ्रॉम होम हो जाए, लोगों को मना किया जाए कि आप बाहर ना निकलें, डस्ट एलर्जी खास तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर करे. सबसे नुमाया तब्दीली वो PM2.5 में आई और 2013 में इसकी औसत सालाना 89.5 माइक्रोग्राम फी मतलब मीटर थी जो कि नापा जाता है कि आलूदगी कितनी है, तो वो 89.5 से 2025 में कम होकर सिर्फ 27 माइक्रोग्राम रह गई, यानी तकरीबन 70% की कमी हुई। तो ये आदाद और शुमार यकीनन ये सवाल करते हैं कि बीजिंग ने ये कामयाबी कैसे हासिल की। तो इसका एक जवाब जो है वो जदीद माहौलियाती निगरानी का निज़ाम है जो बीजिंग में इस वक्त राइज है। शहर में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेशंस हैं उनकी बड़ी तादाद में वहां पर छोटे छोटे सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनसे हासिल होने वाला डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि हवा खराब है बल्कि ये समझने में भी मदद देता है कि आलूदगी कहाँ से आ रही है और किस इलाके में ज्यादा है। यानी जो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि हवा का मयार कैसा है, आलूदा है या नहीं है, अगर तो वो आलूदा है तो बताया जाएगा कि अच्छा ये आलूदगी कहाँ से आ रही है, यानी इसका सोर्स क्या है और किस इलाके में ज्यादा है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है बीजिंग की अगर हम बात करें। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का असल फायदा सामने आया। बीजिंग ने पीएम 2.5 के जराए का कई मरतबा तज्जिया किया और 2025 में जो जारी होने वाला चौथा तज्जिया था उसके मुताबिक अब बीजिंग की पीएम 2.5 आलूदगी में जो इलाकाई मुंतकली का हिस्सा है वो 57% है जबकि मकामी जराए का हिस्सा 43% है। यानी अगर अब बीजिंग में जो कि एक एक काफी हद तक कम हो गई है आलूदगी उसको भी जांचा जाए तो 57% वो है जो दूसरी जगह से आ रही है, और जो खुद ये शहर आलूदगी पैदा कर रहा है वो 43% है उसका जो आलूदगी है जो कि बहुत कम है। तो मकामी आलूदगी में अब क्या चीजें हैं, गाड़ियां हैं और उसके अलावा रिहायशी और रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक जो सोर्सेज होते हैं आपके, आग का जल जाना या दीगर चीजों का होना या कचरे का बाहर आ जाना, ये तमाम चीजें 18% है जबकि जो इंडस्ट्रियल कहना चाहिए कि पोल्यूशन है वो तकरीबन 10-10% है। अब ये तब्दीली एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा करती है, जब आलूदगी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाए तो फिर बाकी मसला मजीद मुश्किल हो जाता है। यानी इसको हम यूं ही कहते हैं कि जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो बड़े बड़े जो सोर्सेज थे जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जिसमें गाड़ियों का फॉसिल फ्यूल पर होना था, उसको श्रिंक किया गया, इंडस्ट्रीज को जो है वो मूव किया गया तो उन इलाकों की जानिब जहां आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है और जहां शहरी आबादी कम है। तो ये आपने बड़े बड़े काम तो कर लिए लेकिन अब जब मामलात अब ये हैं कि आपको मजीद कम करना है तो जाहिर है कि फिर छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करना ये और डिमांडिंग हो जाता है। तो पहले बड़े सनती और कोयले के जराए जो थे उनको तो निस्बतन जब कम किया गया तो वो बड़ा वाजे था, उसको कम कर दिया, लेकिन अब बीजिंग में गाड़ियों के हवाले से, तामीरात के हवाले से, शहरी जिंदगी के हवाले से और फिर जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं वहां से जो आने वाली आलूदगी है उससे निमटना अब जो है वो मुश्किल है और उस पर काम किया जा रहा है। इसलिए अब सिर्फ दरख्त लगाना या फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं उनको चेक करना काफी नहीं रहा। बीजिंग मस्तूई जहानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी मुख्तलिफ सेंसर्स को मिलाकर जो आप रिजल्ट हासिल करते हैं उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम कहते हैं, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट से आप जांचें और फिर गाड़ियों पर नस्ल निगरानी का जो निजाम है उसको एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों से आने वाला डेटा जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जमा होता है जहां एल्गोरिथम्स जो हैं वो मुमकिन आलूदगी के खतरात की पहले ही निशानदेही करते हैं कि देखें ये चीज बढ़ रही है तो इससे ये इफेक्ट हो सकता है, ये AI आपको खुद बताता है और उसके बाद मुतालिका महकमे कार्रवाई करते हैं और फिर देखा जाता है कि उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला और इसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो मेरे ख्याल में बीजिंग से जो कुछ सीखा जा सकता है वो ये कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ आलूदगी नापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इसे फैसला साजी का हिस्सा बनाया गया। यानी जो नतीज सामने आ रहे हैं वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपने क्या करना है और वो सब टेक्नोलॉजी की बदौलत है। पहले मसला तलाश किया जाता है, फिर उसका जरिया मालूम किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है और आखिर में नतीज दोबारा डेटा से जांचे जाते हैं कि अच्छा ठीक है जो प्रॉब्लम था हमने उसको इस तरह से हल किया है, अब उस हल का नतीजा क्या निकला है, उसके रिजल्ट्स क्या सामने आए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो ये कि बीजिंग अकेला अपनी जो शहर की हवा है उसे साफ नहीं कर सकता क्योंकि जो ताजा तरीन सरकारी तज्जिये हैं उनके मुताबिक शदीद आलूदगी के दिनों में जो इलाकाई मुंतकली है यानी एक इलाके से दूसरे इलाके तक पोल्यूशन का ट्रांसफर होना वो 80% तक पहुंच सकता है। तो बीजिंग की कामयाबी का जो अगला मरहला है वो सिर्फ शहर के अंदर नहीं बल्कि बीजिंग थियानजिन जो कि उसके साथ का इलाका लगता है और उसके आसपास के इलाकों के दरमियान मुश्तरका माहौलियाती इकदामात से अब जुड़ा हुआ है। 2025 में बीजिंग के तमाम 6 बड़े फजाई आलूदगी के इशारे कौमी मयार पर तो पूरे उतरे। अब ये कामयाबी इस बात की मिसाल है कि किसी बड़े शहर की फजाई आलूदगी को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता और बीजिंग का ये तजुर्बा बताता है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, मुसलसल निगरानी करनी है, साइंसी तहकीक का इस्तेमाल करना है, फिर इलाकों के दरमियान आपस में जो तआवुन है उसको रखना है, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक शहर से दूसरे शहर में आलूदगी ट्रांसफर ना हो, और फिर जदीद टेक्नोलॉजी का एक निजाम जिसको आप मरबूत करें वो जब सामने आता है तो फिर ये चीजें हासिल की जा सकती हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे एआई को, कैसे टेक्नोलॉजीज को, कैसे सेंसर्स को इस्तेमाल करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और आप शायद इस बात से इत्तेफाक करें कि कुछ अरसा पहले मेरा पाकिस्तान जाना हुआ तो मैंने ये देखा कि आज से 2 साल कबल जब मैं गया था तो वहां पर जो रोड सेंस है, यानी आपने हिफाजती जो मयार हैं, यानी बेल्ट आपने बांधनी है, किस लेन में गाड़ी चलानी है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। लेकिन जैसे ही कैमराज लग गए और उसके बाद चालान जो है वो ई चालान आ गया, यानी आप से कोई बहस नहीं कर रहा, अगर आपने रूल्स की वॉयलेशन की है तो उसी वक्त आपको एक ई चालान आ जाएगा जो आपने भरना है। तो इन चीजों से इतना फर्क पड़ा कि अब वहां पर जो रोड सेफ्टी है आपकी अपनी वो बेहतर हो रही है, जो हिफाजत है वो लोग खुद ख्याल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको चालान ना भरना पड़े। तो कानून की हुक्मरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सेंसर्स का होना, कैमरास का लगना, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसकी मिसाल हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर है, कराची है, इवन आपका हैदराबाद अगर हम बात करें, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, फिर मुल्तान है, मुजफ्फराबाद है, या हम इस्लामाबाद की बात करें या हम पिशावर की बात करें, इन तमाम जगहों पर जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके आलूदगी पर काबू पाया जाए और इसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने बीजिंग की सामने आती है।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच एहतसाम, आज काफी दिनों बाद बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। और लास्ट में सुनने वालों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम?
1: पैगाम ये है कि जहां तक मुमकिन हो सके रूल्स को फॉलो करें, ये सोचना कि कोई नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है कि हमारे अकीदे की भी तौहीन है और फिर सिविल सोसाइटीज जितनी भी हैं जो अच्छे मुआशरे हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि आप रूल्स को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें और फिर दूसरों का भी ख्याल रखें तो ओवरऑल चीजें बेहतर होने लगती हैं। ये कह देना कि हम तो ऐसे मुल्क में हैं जहां कोई नहीं पूछता तो चलो खैर है कुछ भी कर ले, मेरा ख्याल है यही वो बुनियादी वजह है जो बिगाड़ का सबब है।
0: बिल्कुल जी, वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एहतसाम।
1: थैंक यू,
0: अल्लाह हाफिज जी। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको हमेशा की तरह सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके तावन से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं। और एहतसाम आज हमारे साथ थे और बहुत यूजफुल और अच्छी कॉन्वर्सेशन जो कि एहतसाम ने हम सबसे शेयर की। तो सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं, रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजों को इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर और आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पोंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03011 96 851
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
11: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है
12: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है

आओ वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं मुझे लगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुकसा आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक है। और हाँ, आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्स और मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू, तो कमेंट्स मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू ज्वाइन कीजिए जो कि आप कर रहे हैं। और साथ साथ एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग

0: ही गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: KG, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और लास्ट में वापस आ चुके हैं जी, लास्ट लेंगे हमारी तो इट मीन्स के लास्ट लकी कॉलर हमें लेना पड़ेगा 03000113488 लास्ट लकी कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर. दर्द क्या हाल चाल?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए.
0: जी मैं बहुत अच्छी, मुझे बताओ आज की अच्छी बात क्या है.
1: जी आज की अच्छी बात, अपनी छोटी छोटी गलती से बचने की कोशिश करो कि क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से टक्कर खाता है.
0: वेरी नाइस, क्या बात है,
1: क्या बात है. देखिए ना,

0: हाँ जी, क्या बात है। अच्छा, और कुछ कहना है सर दर्द?
1: हाँ, और वो भूल गई, आप लखनी भाई मुझे सलाम देते, उसे भी मेरे तरफ से क्या।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह
1: अल्लाह हाफिज।
0: हाफिज। ये थी लास्ट एंड लकी कॉलर सरदर्द, और लास्ट में की कॉलर के बाद फाइनली फाइनली हमारे जाने का वक्त भी हो चुका है। तो हम जाने की तरफ भी जाएंगे कि हमें जाना है। और इसी के साथ हम लास्ट में

0: वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालन जी आस करे छी। वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबिना के इजलास के खिताब कंदे अग भी केतरा ही भेरा है ताड़ियों भी नतन से वजंदियों अपोजिशन से गाल तैयार आयो। अपोजिशन मामला गाल जरिए हल करे जी मुआशी तरक्की जमहूरियत के हथी मिली सके। जरियन मौजूद इजलास में पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली वारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमती अपील जो जायजो वरतो वो। वफाकी काबीना डिफेंस फोर्सिस एक्ट की भी मंजूरी दिनी जो अज ही सैनेट ए कौमी सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली वारे हुकूमती अपील वापस कर छी। जरियन मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त पेपर बॉक्स मुकम्मिल न होजन जो एतराज लगाए वापस कराए छी। बीह अग सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के इलाज अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर हुक्म दिनों हो जै बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नजरसानी की अपील दाखिल कराई हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ गैर मामूली ईरान के तबाही तरफ धिकींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर है ईरान के मुआहदो करण जो मौको दिनों पर फायदो न वी सको। हाँ ईरान खिलाफ अड़ी तबाह कदड़ मुआशी जंग तरफ वनू पाया जो अग कें भी मुल्क खिलाफ न कई वही है। तेल के स्मगलिंग तेल बरदार जहाजन रकम की मुंतकली करेंसी एक्सचेंज मर्कजन के इस्तेमाल ए फर्जी कंपनी के नाले से जहाजन के रजिस्ट्रेशन जड़ा मामला मुआशी जंग की निशाने ते हुंदा। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत कार्रवाई जारी। वधीक पंज दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरियन मौजूद पंजगोर के इलाके कुली सोरान में कुछ इतलाते ऑपरेशन करे पंज दहशतगर्दन के जहनुम भेड़ो कयो वयो। उहे दहशतगर्द मकामी माण्हुनि खां फुरलुट भत्ते खोरन टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम बारे वजीर अली परवेज मलिक असांजी कोशिश से रिफाइनरी गाल मनी डीजल की कीमत घटी वही। आईएफएफजे मुआहदे के दिसंदे पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी बनाने इंतहाई जरूरी है। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाए भी जल्द मुआहदो थींदो तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते भी कम थी रहो है। शाम जो परदेही वजीर ख्वाजा असद हसन पाकिस्तान के दौरे से पहुंची वो। अज पाकिस्तानी इख्तियारन से मुलाकात कंदो। असद हसन नायब वजीर आजम सरदार की दावत पाकिस्तान पहुंतो है। शहीद पायलट राशिद महनाज की शहादत जो 55 दिहाड़ो आईएसपीआर जो चवण है तो राशिद महनाज 1971 के गैर मामूली सूरत हाल में शहीद राशिद महनाज पाकिस्तान के खुदमुख्तियारी इज्जत के तहफुज लाई जान जो नजरानो दिनों। सदर आसिफ ज़रदारी ए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारा शहीद राशिद महनाज के भेटा पेश। सदर ए वज़ीर आज़म राशिद महनाज के वतन लाए बेमिसाल कुर्बानी सदाई याद रखी वेंदी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक बेरिया ए पाक फिजाया के सरबराहान पारा दे शहीद राशिद महनाज के भेटा पेश। कराची के एंटी नार्कोटैक्स अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी ए बेन खिलाफ मंशियात केस की बुधनी। अनमोल उर्फ पिंकी वीडियो लिंक जरिए अदालत में पेश। संदस भाव मोहम्मद नासिर ए जवाबदार नसीम बीवी के गैर हाजिरी से अदालत पारा कावड़ जो इजहार। अदालत पारा बिन्हीं जवाबदार जमानत न थे जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। मोहम्मद नासिर ए नसीम बीवी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर हुक्म। गढ़ी यासीन के गोठ बाकरशाह में हथियारबंदन की फायरिंग धनार नौजवान कतल। हथियारबंदन बकरियों चारींदड़ 30 वरिन के नादिर मारफाणी के फायरिंग करे कतल करे छो। नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले घर में रोज राड़ो। दोदापुर वेझो बिन धुरिन में जेड़ो फायरिंग में एक जणो मारजी वयो। चिकताण मेरामपुर वारे इलाइके में बख्शान लाणी द बिरादरी जे बिन धुरिन में पाणी जे वारे तां जेड़ो थियो। गोलियूं लॻण सबब ज़ुल्फ़कार उर्फ भुट्टो बख्शलाणी मारजी वयो। लाश अस्पताल मुंतकिल। गढ़ी खेरो में बेगारी केनाल मां निकरंदड़ मुख़्तलिफ़ शाखन जे आबादगारन जो पाणीअ कोट खिलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबबि ट्रैफिक मुअतल। गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारन पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताजा शाह कीदन शाह लोन माइनर ऐं सीरवा गॾु गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फराहम कयो वञे।
1: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई। 03073592120।

0: लाइन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: फ्लोर हाउस में मैंने कहा, काबीरे में भी कहा, आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक मनोक्षत बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माची तरफ की जमहूरीत को हम तकमीर दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
2: वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालन जी आज करे छी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबिना के इजलास के खिताब कंदे ताड़ियों बिन हथन से वजंदी आन अग भी केतरा ही भेरा हाँ भी चवा तो अपोजिशन से गाल तैयार आयो। अपोजिशन मामला गाल जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियत हथी मिली सके। जरिए मौजूद इजलास में पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमती अपील का जायजो वरतो वो। वफाकी काबिना डिफेंस फोर्सिस एक्ट 2002 नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी दिनी जेके अज ही सेनेट और कौमी असेंबली में मंजूरी लाए पेश कया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बारे हुकूमती अपील वापस करे छी। जरिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त पेपर बॉक्स मुकम्मल न होजन जो एतराज लगाए वापस करे छो। ब डी अग सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के इलाज अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम दिनो हो जै बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते नजरसानी की अपील दाखिल कराई हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ गैर मामूली है ईरान के तबाही तरफ धिकींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर चवा है ईरान के मुआहदो करण जो मौको दिनो हो पर फायदो न वी सको। हाणे ईरान खिलाफ़ अहिड़ी तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ़ वञूं पिया जेका अॻु कंहिं बि मुल्क खिलाफ़ न कई वई आहे। तेल जे स्मगलिंग तेल बरदार जहाज़नि रक़म जी मुंतकिली करंसी एक्सचेंज मर्कज़नि जे इस्तेमाल ऐं फर्ज़ी कंपनियुनि जे नाले ते जहाज़नि जे रजिस्ट्रेशन जहिड़ा मामला मुआशी जंग जे निशाने ते हूंदा। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत कार्रवाइयूं जारी। वधीक पंज दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद पंजगोर जे इलाइक़े कुली सोरान में गुज़िरी इतला ते ऑपरेशन करे पंज दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो। उहे दहशतगर्द मक़ामी माण्हुनि खां फुरलुट भतेखोरी टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलिक चयो आहे त असांजी कोशिश सां रिफाइनरी ॻाल्हि मञी डीज़ल जी क़ीमत घटिजी वई आहे। IFM माहिदे खे ॾिसंदे पाकिस्तान जी तवानाई सिक्योरिटी बणाइण इंतिही ज़रूरी आहे। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बि जल्द मुआहिदो थींदो। तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते बि कम थी रहियो आहे। शाम जो परॾेही वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे ते पहुंची वो अज पाकिस्तानी तैरन से मुलाकात कद। नायब वजीर आजम इसाक डार भी दावत से पाकिस्तान पहुंतो है। शहीद पायलट राशिद मेनास की शहादत जो 55वां दिहाड़ो ISPR जो चवण है। राशिद मेनास 1971 के गैर मामूली सूरत हाल में शहीद राशिद मेनास पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी इज्जत के तहफुज लाई जान जो नजरानो दिनो। सदर आसिफ अली जरदारी है वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश। सदर वजीर आजम राशिद मेनास के वतन लाइ बेमिसाल कुर्बानी सदाई याद रखी वी। फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर पाक दरिया पाक फिजाया के सरबराहन पारा भी शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश। जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स ए महंगाई खिलाफ कराची में गवर्न हाउस बहरा 5 भी धरण जारी। जमायत इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर खान चवा तो महंगाई के इलेक्ट्रॉनिक के जुल्मन ए पेट्रोलियम लेवी खिलाफ है। पेट्रोलियम लेवी के नाले से शहरों से धाड़ो हयो पो वे मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन सियासी मजामत की जरूरत है। मसला अवामी जदोजहद जरिए ही हल थी सकन था। पिशावर का कोयटिया वींदड़ जाफर एक्सप्रेस जैकमाबाद रेलवे स्टेशन वट सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब रोकी वही। जेकमाबाद रेलवे स्टेशन इंतजामिया जो चवण है बलोचिस्तान रेलवे इंतजामिया का सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के रोके वो है। रेलवे स्टेशन से सहूलतू न होने सबब मुसाफिर औरतू मासूम बारा ए मर्द सख्त परेशान आन। कराची के एंटी नार्कोटैक्स अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी ए बेन खिलाफ मंशियात केस की बुधनी। अनमोल उर्फ पिंकी वीडियो लिंक जरिए अदालत में पेश थी। संदस भाव मोहम्मद नासिर ए जवाबदार नसीम बीवी के गैर हाजिरी से अदालत पारा कावड़ जो इजहार। अदालत पारा बिन्हीं जवाबदार जमानत न थे जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। मोहम्मद नासिर ए नसीम बीवी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर हुक्म। घड़ी यासीन के गोट बाकर शाह में हथियारबंदन की फायरिंग। धनार नौजवान कतल। हथियारबंदन बकरियों चारींदड़ टी वरियन के नादिर माफाणी के फायरिंग करे कतल कर छो। नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर घर में रोज राड़ो। दोदापुर वेझो बिन धुरी में झेड़ो फायरिंग में एक जणो मार चिकतान। मीरामपुर वारे इलाके में बख्शलाणी बिरादरी के बिन धुरी में पानी के वारे तां झेड़ो थो। गोलियों लगने सबब जुल्फकार उर्फ बुटू बख्शलाणी मार लाश अस्पताल मुंतकिल किया।

0: ऐं अहिड़ी खेरो में बेगारी केनाल मां निकिरंदड़ मुख़्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबब ट्रैफ़िक मुअतल थी वई, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताज़ा शाख, ईदन शाख, लुंड माइनर ऐं शेर सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फराहम कयो वञे।
1: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
2: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: सॉन्ग्स तमाम बेहतर।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आए, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 AM to 5 PM ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन, हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो, याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी, माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज खंघ टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतन में वजन जो न वधण, उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो, राबते लाए 03001-9196-851।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुनकर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो नमूनात है उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माफी तरफ की जमहूरियत को हम तकमीर दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
2: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालन जी आज करे छी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबिना के इजलास के खिताब कदे ताड़ियों बिन हथन से वजंदियों अग में केतरा ही भेरा हाँ भी चवं तो अपोजिशन से गालन लाय तैयार आयो। अपोजिशन मामला गालन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियत हथी मिली सके। जरिए मौजूद इजलास में पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमती अपील को जायजो वरतो वो। वफाकी काबिना डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी दिनी जेके अज ही सेनेट ए कौमी असेंबली में मंजूरी लाय पेश कया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बारे हुकूमती अपील वापस कर छी। जरिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त पेपर बॉक्स मुकम्मिल न होजन जो एतराज लगाए वापस कराए छी। जरिए मौजूद पीटीआई पारा बानी के अस्पताल मुंतकिल करते हुकूमत खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई लाइ दरख्वास्त दाखिल कर तैयारी मुकम्मिल। वही अग सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के इलाज अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म दिनों हो जै बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नजरसानी की अपील दाखिल कराई हुई। पाकिस्तान पहुतल शामी परदेही वजीर साद एहसन के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात में बतरफी सहकार बढ़ाने ते गौर। परदेही ऑफिस मौजूद पाकिस्तान ए शाम विच में गड़े दिलचस्पी वारन शोबन में सहकार ते गाल बोल। शामी परदेही वजीर पारा पाकिस्तान ए शाम विच में फायरान लागापन के नसर ए पुख्ते बहाली जो अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत कार्रवाई जारी वधिक पंज दहशतगर्द मारज वाया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद पंजगोर के इलाके गोली सोरान में गुजी तलाते ऑपरेशन कर पंज दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। उहे दहशतगर्द मकामी माण्हुनि खां फुर लुट भत्तेखोरी टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम बारे वजीर अली परवेज मलिक है तो असि कोशिश से रिफाइनरी गाल मंझी डीजल की कीमत घटी वही है। IMF के मुहदे के ऐसे पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी बनाने ही जरूरी है। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाए भी जल्द मुहदो तवानाई सेक्टर की डी रेगुलेशन से भी कम कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ गैर मामूली ईरान के तबाह तरफ धिकींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर है तो ईरान के मुहदो करण जो मौको दिनों हो पर फायदो न वी सको। हाँ ईरान खिलाफ अड़ी तबाह कदड़ मुआशी जंग तरफ वनू पाया जेका अग कें भी मुल्क खिलाफ न कई वही है। तेल के स्मगलिंग तेल बरदार जहाजन रकम की मुंतकली कर एक्सचेंज मर्कजन के इस्तेमाल फर्जी कंपनियों के नाले से जहाजन के रजिस्ट्रेशन जड़ा मामला मुआशी जंग के निशाने से होंगे। शहीद पायलट राशिद मेनास के शहादत जो 55वां दिहाड़ो आ। SPR जो चवण है तो राशिद मेनास 1971 के गैर मामूली सूरत हाल में शहीद राशिद मेनास पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी ए इज्जत के तहफ़ुज़ लाई जान जो नजराना दिनों। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारा शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश। सदर ए वज़ीर आज़म राशिद मेनास के वतन लाइ बेमिसाल कुर्बानी सदाई याद रखी वेंदी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक बहरिया ए पाक फिजाया के सरबराहन पारा भी शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश कई वही। जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लिमिटेक्स ए महंगाई खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस बहरा 5 डी भी धरणो जारी है। जमायत इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर छान है तो महंगाई के इलेक्ट्रिक के जुल्मन ए पेट्रोलियम लिवी खिलाफ है। पेट्रोलियम लिवी के नाले से शहरों से धाड़ो हयो पो वे मौजूदा सूरत हाल में पुरमन सियासी मजामत की जरूरत है। मसला अवामी जदोजहद जरिए ही हल थी सकन था। पिशावर का कोटिया वींदड़ जाफर एक्सप्रेस जगमाबाद रेलवे स्टेशन व सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब रोकी वही। जगमाबाद रेलवे स्टेशन इंतजामिया चवण है तो बलोचिस्तान रेलवे इंतजामिया के सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के रोके वो है। रेलवे स्टेशन से सहूलतू न होजन सबब मुसाफिर औरतू मासूम बाड़ा मर्द सख्त परेशान है। कराची के एंटी नार्कोटेक्स अनमोल उर्फ पिंकी और बेन खिलाफ मंशियात केस की बुधनी। अनमोल उर्फ पिंकी वीडियो लिंक जरिए अदालत में पेश। संदस भाव मोहम्मद नासिर और जवाबदार नसीम बीवी के गैर हाजिरी से अदालत पारा कावड़ जो इजहार। अदालत पारा बिन्हीं जवाबदार जमानत न थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। मोहम्मद नासिर और नसीम बीवी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश करण जो हुक्म। गढ़ी यासीन के गोठ बाकरशाह में हथियारबंदन की फायरिंग। धनार नौजवान कतल। हथियारबंदन बकरियों चारींद टीह वरियन के नादर मारफाणी के फायरिंग करे कतल कर छो। नौजवान जो लास्ट जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर वो घर में रोजगार।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह नव

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
1: अदा
2: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिले आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: पेश कियल तरमीम एवान अक्सरियत राय से मंजूर करे वरता उन वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ वफाकी काबीना भी बिन्हीं बिल्स की मंजूरी दिनी।

0: सिंधी नेशनलिस्ट और टीटीपी उनका नेक्सस बन रहा है और हमला करना चाहते हैं आप कराची में या बलूचिस्तान में, तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके और बैठे कहाँ हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहता हूँ।
1: मैं समझता कि मुझसे शायद लफ्जों पर गलत चुनाव हुआ, अलहदगी के प्रयास होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी पारां गुजरियल ॾींहुं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग़लति लफ़्ज़नि जी चूंड जो एतिराफ़। बिलाल भुट्टो जरदारी खां साफ़ी सवाल कयो त छा अवा क़ौम परस्त धुरियुनि खे मुल्क जे ख़िलाफ़ था समुझो। बिलाल भुट्टो जरदारी चयो त गुज़िरियल ॾींहुं मूंखां लफ़्ज़नि जी चूंड में ग़लती थी, मुंहिंजे चवण जो मक़सदु हो त तशदुद जो रस्तो अख़्तियार कंदड़ अलहदगी पसंद दहशतगर्दीअ में मुलविस आहिनि। उन्हनि तनज़ीमनि जे सहूलतकारी पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान मां थी रही आहे। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली वारी हुकूमती अपील एतराज लगाए वापस करे छी। सरियन मूजिब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त भी पेपर बुक्स मुकम्मल न होजन जो एतराज लगाए वापस कराए छा। सरियन मूजिब पीटीआई पारा वानी के अस्पताल मुंतकिल करण ते हुकूमत खिलाफ़ तोहीन अदालत की कार्रवाई लाए दरख्वास्त दाखिल करण की तैयारी मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट बिन डीह अंदर पीटीआई वानी के अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म दिनों हुआ।

पाकिस्तान पहुतल शामी परडेही वजीर साद एहसन जी नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात भी तरफो सहकार वधारे गालियों परडेही ऑफिस मूजिब पाकिस्तान ए शाम विच में गड़ियल दिलचस्पी वारन शोबन में सहकार से गाल बोल कई वही शामी परडेही वजीर पारा बिन्हीं मुल्कन विच में भाईराण लागापन के वधिक पुख्तो करण जो अजम मलाशिया के घरू वजीर पाकिस्तान मोनूमेंट ए इस्लामाबाद पुलिस लाइन से दौरों भी कयो खेस गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर वो शहीदन की यादगार से हाजिरी भी भरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन रदतुल फितना टे तहत कार्रवाई जारी वधिक पंज दहशतगर्द मारजी विया सिक्योरिटी जरियन मूजिब पंचगोर के इलाके कली सोरान में गुजे इतला ते ऑपरेशन करे पंच दहशतगर्द के जहरम भेड़ो कयो ये दहशतगर्द मकामी मानून का पुर लुट भत्ते खोरी टारगेट किलिंग आबकाती हमलन में मुलविस हुआ।

पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलिक चयो आहे त असांजी कोशिश सां रिफाइनरी ॻाल्हि वञे। डीजल जी क़ीमत घटिजी वई। IMF जे मुआहिदे खे ॾिसंदे पाकिस्तान जी तवानाई सिक्योरिटी बढ़ाइण इंतिहाई ज़रूरी आहे। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बि जल्द मुआहिदो थींदो। तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते बि कम थी रहियो आहे।

0: कराची में गवर्नर हाउस बाहिरां पंजे ॾींहं बि धरणो जारी। जमात इस्लामी कराची जे अमीर
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप 1.5-4-6-9-12 inch में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जीए मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
7: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ जीए FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जी कमान अख्तियार तहत जिम्मेवारी अदा कर दो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हथियारबंद फौज जी अमले कमांड कंट्रोल जो अख्तियार भी हासिल होंद। कमांड एंड कंट्रोल के जमन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वफाकी हुकूमत आलो जवाबदार होंद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आइन के आर्टिकल 243 तहत कें भी मुकर रिटायर्ड या बरतरफ कर सकंदो। इस्तीफा मंजूर या रद्द करण समेत मुलाजमत के बरकरार रखने जो भी अख्तियार वठस होंद। एक्ट में दरपेश कें भी मसले जो सदर पाकिस्तान अजालो कर सकंदो।

0: पीटीआई बानीअ खे शफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारी अदालती हुकुम ते अमल करण में बाक़ी कुझु कलाक रहिजी विया। हुकुम न मञण जी सूरत में पीटीआई पारां तोहीन अदालत जी कार्रवाई जी तयारी। पीटीआई जे जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा अॼोके ॾींहं खे फ़ैसिलाइतो करार ॾींदे चयो आहे त हुकूमत अदालती हुकुम ते नज़रसानीअ जी दरख़्वास्त वापसि वठी चुकी आहे। हाणे उन वटि बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल करण खां सवाइ को बि ऑप्शन मौजूदु न आहे। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनाउला जो चवणु हो त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जा एतिराज़ ख़तमु करे नज़रसानी दरख़्वास्त ॿीहर दाख़िल कई वेंदी। सेनेट जे इजलास दौरान पीटीआई बानीअ जी अस्पताल मुंतकिली वारे मामले ते बहस। मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त माण्हुनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे। कोट लखपत जेल में क़ैद यासमीन राशिद बे कैंसर में मुबतला आहे। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ सुठो माहौल जुड़ी रहियो हो। उमेद आहे त अॼोके ॾींहं में फ़ैसिले ते अमल करे पीटीआई बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो त ऐवान में वाज़ह चयो हो त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते मुकमल अमल कयो वेंदो। पीटीआई बानीअ खे जेको इलाज घुरिजे उहो सरकारी अस्पताल में न आहे त खेसि शफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मोकिलियो वेंदो। पीटीआई बानीअ खे इलाज लाइ परॾेह मोकिलण जो फ़ैसिलो बि थी सघे थो।
1: जो वायलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था।
0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी गुजरियल ॾींहुं कॉम्परसन बाबति चयल लफ़्ज़नि ते वज़ाहत। बिलावल भुट्टो खां सहाफ़ी सवाल कयो त छा अवां कॉम्परस धुरनि खे मुल्क जे ख़िलाफ़ था सम्झो। बिलावल भुट्टो जरदारी जवाबु ॾींदे चयो त गुज़िरियल ॾींहुं मूंखां लफ़्ज़नि जी चूंड में ग़लती थी। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु हो त तशदुद जो रस्तो अख़्तियार कंदड़ अलहदगी पसंदि दहशतगर्दीअ में मुलविस आहिनि। उन्हनि तनज़ीमनि जी सहूलतकारी पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान मां थी रही आहे।

पाकिस्तान पहुतल शामी परडेही वजीर साद अहसन के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात बितरफो सहकार वधाइण ते ख्यालन जी डे वठ परडेही ऑफिस मूजिब पाकिस्तान ए शाम विच में गडियल दिलचस्पी वारन शोबन में सहकार ते भी गाल्हि ॿोल्हि कई वई। शामी परडेही वजीर पारां बिन्ही मुल्कन विच में भाईरान लागापन के वधीक पुख्तो करण जो अज़म। मलेशिया के घरू वजीर पाकिस्तान मूवमेंट ए इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स जो दौरो भी कयो। खेस गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वयो। शहीदन के यादगार ते भी हाजिरी हुई।

सिंध जे सीनियर वज़ीर पारां रावलपिंडी जे बरसाति मुतासिरनि सां हमदर्दीअ जो इज़हार। शर्जील मेमन चयो त तबाही मचाईंदड़ बरसातुनि सबबि ॾुखी ऐं अफ़सोसनाक सूरतहाल पैदा थी आहे। उहो बरसाति मुतासिरनि लाइ दुआगू आहे। कॾहिं बि अहिड़ियुनि कुदरती आफ़तुनि खे सियासी रंग न ॾिनो वेंदो। माज़ीअ में कराची अंदरि कुझु कलाकनि जी बरसाति जी भरपूर मीडिया कवरेज कई वई, पर साॻी मीडिया रावलपिंडीअ जी सूरतहाल खे नज़रअंदाज़ कयो। पंजाब जे सुद समा वारे वज़ीर उज़्मा बुख़ारी जो चवणो हो त पंजाब जे कंहिं बि शहर में मींहुं वसंदो आहे त कुझु कलाकनि अंदरि पाणी नेकाल थी वेंदो आहे। सिंध में घणो मींहुं वसण ते केतिरा ई ॾींहं पाणी बीठल रहे थो।

सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन रंदल फितना 3 तहत कार्रवाइयूं जारी वधीक 5 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मौज पंजगोर जे इलाइक़े कलीसोरान में गुझे इतलाते ऑपरेशन करे 5 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो दहशतगर्द मक़ामी माण्हुनि खां फुर लुट भते खोरी टारगेट किले ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: ॻाल्हि कंदे गाल ब्लेडर में इहो नुस्ख़ो तमामु कामयाबु आहे ऐं असां इहो ई नुस्ख़ो जेको आहे सो दोस्तनि खे ॿुधाईंदा आहियूं इन मां काफ़ी सारो
1: सर तमामु इहो बहितरीन निकिरो तव्हां नुस्ख़ो ॿुधायो मां चवंदुसि इहो नुस्ख़ो अञा बि तव्हां रिपीट कयो जेके दोस्त न सम्झी सघंदा आहिनि छो जो हिकु दफ़ो पहिरियों उन्हनि जो तवजो बि घटि हूंदो आहे त भले हिकु दफ़ो रिपीट कयो जीअं उहे भाउ आसानी सां उनखे नोट बि करे सघनि ॿुधी बि सघनि ऐं असीं उनखे चवंदासीं 0301-2196-8851 ते अवां खां कॉल करे पुछी बि सघनि था नुस्ख़ो
0: बिल्कुलु ज़ैतून जो तेल जेको आहे सो मशहूरु हूंदो आहे हिन में ज़ैतून जे तेल में ॿ क़िस्म जा तेल ईंदा आहिनि हिकिड़ो ईंदो आहे मालिश जे हवाले सां जेको ऐं ॿियो ईंदो आहे यानी पीअण जे हवाले सां तव्हां कंहिंखे बि कंहिं सुठे मेडिकल स्टोर वारे खे या पंसार वटि वेंदो या कंहिं वॾे सुपर जनरल स्टोर में
1: पीअण मतिलबु खाइण में खाधे पीते में
0: इस्तेमालु कजे थो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल उनखे चइबो आहे एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल ॿाहिरिनि मुल्कनि जा बि अचनि था असां वटि जा पाकिस्तान जा बि अचनि था कहिड़ो बि मिली वञे त वधीक उहो बहितरु आहे एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल जे नाले सां यानी जेको पीअण जो या खाइण जो तेल इस्तेमालु कबो आहे उहो चमचो हिकिड़ो ऐं चमचो सिंधी माखी जो चमचो जेको आहे सो लीमे जे रस जो इहे तव्हां पाणी में जेको आहे सो नीम गरम पाणी में विझी करे ऐं इस्तेमालु कराईंदो पेशेंट खे त अलाह ताला जी महिरबानी सां चाहे किडनी स्टोन आहे चाहे गाल ब्लेडर स्टोन आहे उहा जेको आहे सो बिल्कुलु ख़तमु थी वञे थी
1: तमामु बहितरीन सामिन खे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहराप एफएम 94 तव्हांजी ख़िदमत में लाइव पेश कयो पियो वञे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे जेको मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहियो आहे डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि डॉक्टर साहिबु तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं डॉक्टर साहिबु अवां आख़िर में असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा साईं
0: जी सर बिल्कुलु काल जे तरफ़
1: हा काल हिकिड़ी शामिलु कंदा हलूं था पहिरीं ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो पर ही बि मिस कॉल थी चुकी आहे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदासीं
0: जेको आहे सो पैगाम इहो ई हूंदो आहे त 5 वक़्त जी निमाज़ जी पाबंदी ज़रूरी आहे सदिको ज़रूरु ॾींदा कयो ऐं सदिके सां जेको आहे सो हर बीमारी हर तकलीफ़ दूरि थिए थी ऐं उन खां अलावा जेके बीमार आहिनि उन्हनि जे लाइ या हॉस्पिटलाइज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो या जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो ऐं असांखे ज़रूरु दुआ में यादि कजो वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि 0301-2196-8851 अव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबतो करे सघो था काल जो सिलसिलो अञा बि जारी आहे डॉक्टर साहिबु पैगाम पंहिंजो ॾेई चुको आहे पर असांजी कोशिशि हूंदी आहे त वरी बि जेको काल करे थो भला हुनखे डॉक्टर साहिबु शामिलु कंदा हलंदो हिकु बि काल शामिलु करे छॾियूं पिया हली करे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: साईं मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए जी जी भली कार चवंदा अली नवाज़ साहिब खे ठीकु आहियो त भई ठीकु आहे मुंहिंजा साईं
2: ख़ुशि आहियो
1: दुआ आहे अलहमदुल्ला छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां खबे पासे या सॼे पासे या मथे सीने खां या हेठि पेट खां
0: किचरो अची वेंदो आहे या यूटीआई इंफेक्शन थी वेंदो आहे या स्टोन हूंदो आहे या जेको आहे सो गैस्ट्रिक पेन बि पइजी सघे थो सो हुन अधे खे इहो ई चवंदासीं हिकु त जेको आहे सो जीरो सौंफ़ अधु चमची रोज़ाना राति जो पाणी में काढ़े ऐं उहो काढ़ो पीअनि इनशाला ताला फ़र्क़ु पइजी ईंदो वरना रूबरू क्लिनिक ते सुभाणे मां क्लिनिक ते हूंदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक बहितरु
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु सामिन डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे गुर्दे जी पथरी आहे मसाने जी पथरी आहे पिते जी पथरी आहे नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद वधियल आहिनि का बि बीमारी लाइलाज न आहे अव्हांखे पुराणे खां पुराणो स्किन जो मसलो है जो 2022 का वी अक्सर जिक्र क्या स्किन जहाँ तमाम घना इशूज आया काफ़ी मरीज अड़ा जिनके 5 साल 4 साल 3 साल थे उनके 10 साल थे स्किन जहाँ प्रॉब्लम्स आन सेहत याब ना थन पे तुम कुछ चवन चाहो था डॉक्टर साहब
0: में माशाला काफ़ी सारा पेशेंट्स डील क्या अलहमदिल्ला काफ़ी सारा उनके शिफा

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: उम्मीद करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो मामला है उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माटी पर की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। ताली दोनों हाथों में बजती है, अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालन जी आछ करे छी। वफाकी काबिना जे इजलास के खिताब कंदे वज़ीर आज़म चयो तो ताड़ी बिन हथन सा वजंदी आहे। अग बे चयो ए हाणे बे चवां तो अपोजिशन सा गालन लाए तैयार आयूं। अपोजिशन मामला गालन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की ए जमहूरियत के हथी मिली सके।

कराचीअ में PIDC सिग्नल वटि धरणो हणी वेठल वकीलनि ऐं हुकूमती वफ़द में ॻाल्हियूं कामयाब। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद अली मलकाणी ऐं मुर्तज़ा वहाब धरणे वारे हंधि पहुची ॻाल्हियूं कयूं। धरणो ख़तमु थियण खां पोइ PIDC सिग्नल खां वज़ीर आला हाउस तरफ़ वेंदड़ ट्रैफ़िक बहाल। वकील अॻवाणनि जो चवणु हो त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। प्रिया कुमारी ऐं ॿिया ॿार बाज़ियाबु कराया वञनि। SP SC जे मुतासिर उमेदवारनि सां इंसाफ़ ऐं सिंध जे पाणी ते धाड़ो बंदि कयो वञे।

जमात इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स है महंगाई खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस बहरा पंचे ढी भी धरणो जारी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर खान महंगाई के इलेक्ट्रिक के जुल्म पेट्रोलियम लेवी खिलाफ है। पेट्रोलियम लेवी के नाले से शहरियों से धाड़ो हयो पे वे मौजूदा सूरत हाल में पुरमन सियासी मुजामत की जरूरत है। मसला अवामी जदोजहद जरिए ही हल थी सकन था।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मार्च PIDC अगियां धरनो है वयो मसलन जे हल लाए गडल कमेटी जोड़न वर सुबई वजीरन जी खातरी ते इत्तेजाज खत्म। सेव सिंध लायर्स फॉर्म कमेटी जे सदते वकीलन जी मार्च दौरान इंतजामिया कंटेनर्स लगाए रस्ता बंद करे छड्या। सुबई वजीर नासिर हुसैन शाह मेयर कराची मुर्तजा वहाब धरने वाले हंध पहुंची वकीलन सां गालियों करे धरनो खत्म करायो। नासिर हुसैन शाह चयो त अॼुकल्ह वापारी बि निकिरी पिया आहिनि त 36 सूबा ठाहियो 32 सूबा ठाहियो पर पीपुल्स पार्टीअ जो सूबनि जे हवाले सां मौक़िफ़ वाज़े आहे। जिन असेंबलियुनि ठहराउ मंज़ूर कया आहिनि भली हुते नवां सूबा ठाहिया वञनि, सिंध असेंबली सूबनि जे ख़िलाफ़ु ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। वकील अॻवाननि मुतालबो कयो त सिंध असेंबलीअ मां हिकु भेरो ॿीहर सिंध जी वहदानियत बाबति ठहराउ मंज़ूर कराइण समेत गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
2: 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिं।
4: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 और 0242-460100।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वजीर आजम के अस्पताल मुंतकिल करण इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेवारी है। रात 12 वगे ताईं जो वक्त है, ॾिसजे छा थो थिए।
2: आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माची तरक्की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
3: वज़ीर आज़म अपोजिशन के विहर गालियन की आज करे छी। वफ़ाक़ी काबीना के इजलास के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त ताड़ी बिन हथन सा वजंदी आहे। अग भी चयो ऐं हाणे भी चवां थो त अपोजिशन सा गालियन लाइ तयार आहियूं। अपोजिशन मामला गालियन ज़रिए हल करे त जीअं मुआशी तरक्की ऐं जमहूरियत खे हथी मिली सघे।

0: क़ौमी असेंबली खां पोइ सेनेट में बि डिफेंस फोर्सिस एक्ट 2026 ऐं नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 तरमीमी बिल मंज़ूर। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में तरमीमी बिल इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर कया विया। डिफेंस फोर्सिस एक्ट तहत दिफ़ाई फ़ौज जो हिकु हेडक्वार्टर क़ाइमु कयो वेंदो। हेडक्वार्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस जी कमान ऐं इख़्तियारनि तहत ज़िमेवारियूं अदा कंदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस खे हथियारबंद फ़ौज जे अमले कमांड ऐं कंट्रोल जो इख़्तियार बि हासिल हूंदो। कमांड एंड कंट्रोल जे ज़िमन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस वफ़ाक़ी हुकूमत आॾो जवाबदेह हूंदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस आइन जे आर्टिकल 243 तहत कंहिंखे बि मुक़रर, रिटायर्ड या बरतरफ़ करे सघंदो। इस्तीफ़ा मंसूर या रद्द करण समेत मुलाज़िमत खे बरकरार रखण जो इख़्तियार बि वटसि हूंदो। एक्ट में दरपेश कंहिं बि मसइले जो सदर पाकिस्तान अज़ालो करे सघंदो।
1: पाकिस्तान पहुतल शामी परडे॒ही वज़ीर साद हसन जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाकात, बे तरफ़ो सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही आफ़ीस मूजिबि पाकिस्तान ऐं शाम विच में गडि॒यल दिलचस्पी वारनि शोबनि में सहकार ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। शामी परडे॒ही वज़ीर पारां बि॒न्ही मुल्कनि विच में भाइराणनि लाॻापनि खे वधीक पुख़्तो करण जो अज़म।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी

0: में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट ॿुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 03011 96 8851।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलबु हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 03001380-8347।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: ज़रीन मुझे पीटीआई बानी के अजी अजाला जेल का अस्पताल मुंतकिल करने का इंतजाम मुकम्मल किया गया है। आजम नजीर तारण जो चवण हो तो पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेवारी है। रात 12 बजे तक जो वक्त है।